मन मन सिमरन करिया साब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बाल बाल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमी अपारा सब त्यावहे सब त्यावहे तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर।

तू कर कर वेखा हे जान हे सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला।

काल पाए कर बेसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, बेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छने पुजायो। याद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

अवसास करो रजले सदोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुरगबा सुरगबुर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई।

सम्मत 1755 हाड़ बदी प्रथम सौख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लहो ले हो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण की ओ राघवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाद जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

सो पावै। सदा सेवत सलाह तेरी नाम मानव सावै। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा साब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो। जिस दिया एह वडिया।

गुण गोविंद गाहे। सब सैनु कृपाल सुमाले साहे साहे, दरथा कोए न जाए जे आवे तो दिया है। श्लोक महला पंजवा अंतर

मन करे उथे तू खर्च भी सकता है। बड़े चाओ दे नल माया गिनन लग्या संगत जी, माया दा सवा है जिन्ना हथा नल माया गिनीए, ओ हथा नू कालख लग जांदी है, हथ काले हो जांदे। बाबा मोहरी जी गर्मिया दी रुत सी संगत जी, कदे पसीना पूंजदे ओ कालख मूह नू लग गई ते पातशाह हसन लगे, पुत्र मोहरी ए माया केवल हथ मूह ही काला नहीं करदी, ए मन भी काला कर दिंदी है। मन काला हो जावे फिर लोक ते परलोक भी काला हो जांदा है। वेख के महसूस कीता भी मेरी भुल है, मैं माया नाल अंतां दा प्रेम करदा, ए मैनू काला कर रही है। पातशाह दे बचन सच्चे ने, महाराज आखण लगे पुत्र मोहरी ए दुनियावी माया ते हथ मूह काला करदी है, पर जेड़ी नाम रूपी धन है ना, ओ लोक परलोक विच मुख उजला करदी है। इस लई जेकर माया दे नाल प्रेम करना है फिर नाम दी माया नाल कर, नाम रूपी धन इकट्ठा कर, तेरा लोक भी अते परलोक भी सवरेगा। पातशाह दे बचना नू हिरदे विच बसाया संगत जी, फिर जिन्ना समा भी संसार दे उपर बाबा मोहरी जी रहे, माया गुजरान गुजारे क जोगी रखी, बहुती कदे इच्छा कीती नहीं, भगती सुरूप हो गए सन बहुती बंदगी करन वाले, पातशाह दे आग्याकार हो के रहे। इथो तक पिछला इतिहास श्रवण कीता है, अज दा पवित्र इतिहास जिमे दमदमी टकसाल दे पंजवें मुखी ज्ञानी संत सिंह जिया दे विद्यार्थी कवि संतोख सिंह जी पवित्र इतिहास नू मोतियां दे वांग परोंदे ने। आओ मन चित बिरतियां एकागर करिए, गुरु नानक दे करदा शरदा भावना वाला इतिहास शरदा।

0: महाराज आप जी ते मुरदिया अंदर भी जान पा देंदे हो, कोई ऐसा वरतावा वरतावो जी जिस वेले पातशाह नू ऐसी बेनती की। महाराज फिर आख दे बीबी पानी पुत्री पानी असी अपनी उम्र जो बची है ओ तुहाडे पति नू बख्शिश कर देवांगे।
1: इत पर लोक गमन शुभ लेवो
0: एदा असी ओदी थां ते आप परलोक सुधार जावांगे। असी बहुत गुरु नानक

0: पवन समावे
1: सखीदा दर्द स्वरूप समावे
0: है धर्म सूर मेरा जबर दे बरख लाभ डट जावे
2: जी भाई। किसे आखिया कौमां दी जिंदगी नूं किसे आखिया कौमां दी जिंदगी नूं कायम रखदे ने दान दानियां दे किसे ताकत तलवार नूं मुख मन्निया किसे फलसफे दसे रूहानियां दे भावें सारियां गल्लां चंगियां ने चंगे गुण ने चंगियां निशानियां दे ऐ पर तत सियाणियां कढ छड्डिया कौमां जूंदियां नाल कुर्बानियां दे जुगो जुग अटल चबर तखत सिंघासन दे मालक रहमतां दे खजाने लोक अते परलोक विच साडे कलजुगी जीवां दे पर्दे टक्कण वाले विश्व दी एक लौती आस तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जीआं दी छत्र छाया हेठ बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन भुल जांदे कारनामे जिहड़े प्यो दादियां दे पौन फटकारा लोक उन्हां दी औलाद नूं गुरुद्वारा साहिब दे अंथक सेवादार मुख सेवादार जिहड़े हर वेले सत्संगे उह सिधांत ते चलदे सन सेवक को सेवा बण आई हुकम बूझ परम पद पाई ते नाल ही सत्संगत जिवें नवाब कपूर सिंह नूं नवाबी मिली सी पर उन्हां ने घोड़ियां दा लदेड़ा ढाउण दा पंथ तो वादा कीता सी वे सेवा नहीं छड्डनी जदों मैं लदेड़ा ढोवांगा जदों मैं घोड़ियां नूं खरकणा करांगा जदों मैं जोड़ियां दी सेवा करांगा तां कि मैनूं चेता आ जाए कि मैं ग्राउंड ते वी रहना है क्योंकि यह चौधरां दा नशा बड़ा वड्डा सत्संग जी कौम दा नुकसान करदा पर यह ऐसा कौम दा दर्द रखण वाला वह जथेदार जिन्हां ने सत्संग बड़ी चढ़दी कला दे नाल इस गुरु घर की एड्डी वड्डी सेवा की वर्ल्ड विच उन्हां दा नां अनमोल हीरे की तरह चमकिया पर कुछ सत्संग जी दुश्मन एजेंसियां नूं चंगा ना लगा अज तो 3 साल पहला उन्हां नूं शहीद कर दिता ते समुची प्रबंधक कमेटी ने और चढ़दी कला दे नाल उन्हां दे सहयोगियां ने वड्डा उपराला कीता है कि बाहर पंडाल ला के क्योंकि संगत की शमूलीयत दिनों दिनी वधी जानी है चंगे प्रबंधकां नूं चंगे प्रबंध नूं मुख रखदिआं होइआं सुंदर पंडाल सजाया है हुण लोड़ है संगत की बह के आपां गुरु का इतिहास सरवण करना है ते नाले साध सिंह जी गुरु की इलाही बाणी का कीर्तन सरवण करना है आओ जिन्ना मेरे हिस्से समा आया है मैं अपने प्रकरण की आरंभता करा सब तो पहला फतेह बुला दिओ साडी हाजरी पातशाह दे मुबारक चरणा विच लग जाए फतेह एडी चढ़दी कला ना बुलाया करो साध संगत पता लग जाए कि असी उस चढ़दी कला वाले जथेदार का दिन मना रहे हैं आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आओ एक कविता की मंग आई है कि जदों 2015 विच इस गुरु घर विखे लगभग एक महीना असी साध सिंह जी इत्थे हाजरी भरी बड़े वड्डे सानू सत्कार मिले जहदर होनी आप सानू सरवण करदे रहे प्यार दिंदे रहे ते मैं मंग है कि मरदे मजाहद संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले साध सिंह जी एक गल ध्यान नाल सुनियो कई वार संगत अपने घरां विच प्रशादा वरजदी है भावें के कुछ लोगों ने कह दिता जी ये ब्राह्मणवाद है फलान है दंद कसाई है ओ आ कई लफ्ज इनू दे दिते पर अज याद रखियो कि संतां नूं ये चीज कित्थों प्राप्त हुई ये बख्शिश कित्थों प्राप्त हुई कहिंदे जदों दमदमी टकसाल दे मुखी श्रीमान संत बाबा गुरबचन सिंह जी रोडे पिंड विच क्योंकि दमदमी टकसाल हमेशा 4 दिन का गुरमत समागम रखिया करती सी 4 दिन का भी पता नहीं केड़ी रूह ते अज असर होना है किन्ने अगले दिन इतिहास तो प्रभावित होके खंडे बाटे का अमर छकण वास्ते अपना नां लिखाउणा है ते हरेक पिंड विच दमदमी टकसाल जदों प्रचार करती सी ते कहिंदे जदों रोडे पिंड विच प्रचार कीता ते एक दिन सत्कारयोग संतां दे पिता जी और माता जी तन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान उस माता पिता की किड्डी वड्डी भगती होगी जिन्हां दे घर ओ मरदे मजाहद ने जन्म लिया। जदों सत्कारयोग सतसंगत संत गुरवचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले बापू जोगिंदर सिंह दे ग्रह विखे उन्होंने अपने मुबारक चरण पाए। कुछ गुरु घर दे प्रबंध गए और होर नगर निवासी गए और दमदमी टकसाल दे सारे विद्यार्थी गए ते गुरु की बाणी दा जाप होया ते जदों संतां ने सुभागब कह दिता जोगिंदर सिंह जी तुहानू रब ने भाग लाया है पुत्रां दीआं दातां बख्शीआं है पर असी चाहुंदे आं कि एक पुत तुसी दमदमी टकसाल दी सेवा विच दे दिओ गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वेखो किड्डी वड्डी सोच सी कि कुछ पुत घर दी कमाई करनगे कुछ पुत सरकारी जॉब करनगे कुछ पुत अपना कारोबार करनगे क्योंकि सानू कारोबार भी चाहिदे आ क्योंकि साडा सिख आर्थिक तौर ते इन्ना मजबूत होवे हर पक्ष तो महाराज ने सानू मजबूत कीता ते अज बड़ी वड्डी त्रासदी है। असी सैकटरी साहब जदों आए ना कनेडा ते पंज दिन पहला श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह जी विधी चंद गए जिहड़े इस वेले बारहवें मुखी ने श्रीमान संत बाबा दया सिंह होना तो बाद उत्थे भी इहो गल चली भी जिवें दल पंथ आ विधी चंदियां दा जिवें बाबे बकालियां दा दल पंथ है जिवें हरियां वेलां वालियां दा दल पंथ है जिवें दमदमी टकसाल है ते होर भी संपर्दावां ने। कहिंदे उह समां सी जदों परिवार ने कहना भी एक पुत्र असी पंथ दे लेखे लाउणा है किसी भी जिहड़ा किसी नाल जुड़िया हुंदा सी ते अज त्रासदी इह आ हर बच्चा चाहुंदा मैं विदेश विच चल जावां मेरे कोल महंगी गड्डी होवे चंगी कोठी होवे मैं आर्थिक तौर ते इन्ना मजबूत हो जावां पर ओ कहिंदे हुण इत्थे फर्क पै गया है जथेबंदियां विच सिंघ घटदे जांदे आ। वेखो संतां दी किड्डी वड्डी उच्ची सोच सी ते क्योंकि पुत वी इक इक असी गां कहिंदे इक ही बड़ा है ते असी करता पुरख बन जांदे आ पर साध सिंह जी उह जिन्ने पैदा कीता उहने रिजक नाल ही लिखिया गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इह बंदे दे भुलेखे ने बंदे दा मन नहीं टिकदा। खैर कहिंदे ने कि जदों संतां ने अपने सारे भचंगी सामने खड़े कर दिते कईआं ने छेआं भचंगियां दा जिक्र कीता है कईआं ने सत्तां भचंगियां दा जिक्र कीता है ते बापू जोगिंदर सिंह जी कहिंदे जी आ तुहाडी सेवा विच बच्चे हाजर ने जिहड़ा चंगा लगदा है ते तुसीं सेवा विच लै जाओ। वेखो साध संगत कहिंदे वल नालों चूहां तोड़ीए ते उह वी सिमदी है बड़ा वड्डा इक दिल हुंदा है कि अपने पुत्र नूं कौम दे लेखे लाउणा ते कहिंदे जवारियां नूं हीरां दी परख हुंदी है। श्रीमान संत बाबा गुरभजन सिंह होना ने संत जरनैल सिंह दी बांह फड़ के कहिंदे उदों 7 सालां दे सी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बांह फड़ के छाती नाल ला लिया कि इस बच्चे दे भागां विच बड़ी वड्डी सेवा है इस बच्चे ने तुहाडा नां वर्ल्ड विच रोशन करना है। जवारियां नूं हीरियां दी परख हुंदी है बंदगी करन वालियां रूहां नूं उह साध संगत जी मत्था ही पड़ लैंदे ने फिर उह संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले अणखता प्रतीक महिते दी ओ धरती जिहड़ियां एजेंसियां नूं अजे भी ओ दुखदी है उस थां ते आ गए। फिर संतां ने साध संगत जी इन्नी मेहनत कीती और गुरबाणी दी विद्या लैके और एडे वड्डे फिलासफर एडे वड्डे प्रचारक बन गए बड़े बड़े वकील बड़े बड़े सेंटर दे मिनिस्टर जदों आके साध संगत जी बड़े बड़े पढ़े लिखे पत्रकार संतां दे सामने बौणे साबत हो जांदे सी बौणे ओ पिछों आउंदे सी कि संतां दी स्कूली पढ़ाई ते थोड़ी है धार्मिक विद्या उहनां कोल ज्यादा है असी इस ढंग दे नाल उहनां ते प्रभाव पावांगे ते सारे आके चरण फड़ लैंदे सी ते साध संगत जी पंथ दर्दी किन्ने सन कहिंदे इक वार फरीदकोट दे लागे संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले किसी दे ग्रह विखे गए अजे विद्यार्थी सन ते उत्थे संतां दा किसी ने जोड़ा चुक लिया। कई वार असी हुण पंजाब विच मेलियां ते जांदे आ कई उह वी हो गए आ जिहड़े वड्डा दान करदे आ कई उह वी हैगे जिहड़े इत्थों माया भेजदे आ भी आ जथा साडे पिंड आउणा चाहीदा आ ढाडी ए रागी कवीशर आ कथावाचक सेवा असी दे देंगे ते कई इहो जिहे वी हैगे आ जिन्हां ने मेचा गुरु घर ही दित्ता हुंदा भी जोड़ा उत्थों चुक के लिआउणा ते मैं इधर जोड़े की गल कह लगा दे इत्थे भी दा कई मार जांदे आ। खैर साध संगत जी इह आपो अपना सुभाअ होया करदा है। खैर उह बगीचा सो कहिंदा मेरा भी टोरंटो चुकिया गया है। खैर गुरु का इहो जिहा आउंदियां हस्तियां कह नहीं सकदे क्योंकि जिवें दिन है रात है पाप है पुन है सच है झूठ है ये पापी भी उन्हें पैदा किए आ पुन्नी भी उन्हें पैदा किए आ चोर भी उन्हें पैदा किए आ दानी भी उन्हें पैदा किए आ क्योंकि चंगे ते माड़े क्योंकि जे माड़े ना होण ते चंगिआं दी परख कौन करेगा। गज के आखो सतनाम ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟੋਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਲੱਕੀ ਜੁੱਤੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੂਕਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 18 ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ 14 ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਹਿਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਏ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ, ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਗੀਚਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘੀਆ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ, ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਬਲੀ, ਦਾਸ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹੈ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਬਰ ਕਤ ਲਗ ਹੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਜਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਹਿਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुदे को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में भेखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या ना ही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सत्य जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा है परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश है
0: केवल भगत कीर्तन संग रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबराह नाम जपावे
0: नानको वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरता रहे
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाई धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: तैसा हरख तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नाहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरे आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपी सरहोते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने को,
1: कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करें,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक न बिजाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस तम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: साते नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिपत्रे आप प्रभुर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहुत जोनी फिर है,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखी,
0: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम सख्त लिव लागी,
1: कई कोट प्रभु को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभु विनाश,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अर खंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की नो विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बो भांत,
0: प्राप्त होए प्रभु माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभु सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: हो वत्यातम प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदा नहारे एको नित्रे,
1: कई कोट नाम रस पीवे हैं,
0: अमर पहे सद सद ही जीव हैं,
1: कई कोट नाम गुण गावे हैं,
0: आत्म रसुक सह समावे,
1: अपने जन को साथ साथ समारी,
0: नानक को हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग,
0: जोत सभावे सोई होग,
1: फिर मैं थाप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मन उगत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन शास्ति रखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भाव है सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और नयावे,
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत स्वभाव है सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत स्वभाव है सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिसतावे,
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवै नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण परम प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही सहात,
0: कल करावन सब को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ,
0: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी,
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
0: अब हूँ सोग हर करंग हसे,
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: अब हूँ उपकाश प्याल,
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल,
1: अब हूँ होए वह बड़ राजा,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू अब कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मोहन धारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू कीट हस्त पतंग होए जिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप ज्यों सुवंगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साध संगति पावे,
0: उसे थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसै पर ब्रह्म का संग,
1: ज्यों जल में जल आए कटाना,
0: ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता होई कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना पद आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरण पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिखिया के करे
0: नैत पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: उदय देख करे विवेक
0: आप एका पै अनेक
1: मरे न बिन सह अब न जाए
0: नानक सद ही रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पिन कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उतर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छलै
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दी
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजो
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यों बुआर तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन निंदक का तुर ही पया
0: नानक जोत सुभावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टै कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्यावो सास गिरा
1: सब कछ वरतै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पाकी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: एक ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਮੋਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਤ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਾਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਅਜਾਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन समाद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद।

गहने पौन पानी बैसंत चंद सुरजुता सगली धरती मातन वर्तन सरजन जा नानक मूसे ज्ञान बिहूनी हाय गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उडुडरावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये को रहना पर ये पाइए को रह

दे मंगेसे सगुण सो परे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खा चले जाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडा अंडू जेरी जुट।

0: पहला पर गड्डी लदिए पर पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खाथ पढ़िए है जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुम्हा हो काजुगरा थगन का पूरा गैर तुम्हा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत कर नीच।

0: नानक कूड़ रहया प्रभो।
1: मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ सुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

पौड़िया पिकरणा क्यों कलप हित धारिये देख किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चल सी।

और चक्कर लगे चक्कर जे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गर्त अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गहिया शाबाश नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले।

सोइए एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सोइए सरावक।

करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाई आ कर सहत सुख मनाए वसया जन इच्छा सब बुझाई।

चंचला चतुराई कने ना पाया, चतुराई ना पाया कने तू सुन मन मेरे आ। ए माया मोनी जिने परम भुलाया, माया था मोनी तने की।

श्री वाहिगुरु साहिब जी तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सहेले राखो राखण हार दियाला नानक करके गोले सो कहो टल गुर सेवीऐ एहने सहज सपाए दर्शन परसिऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्विचार सचा तेरा मन सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा खे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्याय न सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
1: बड़े बड़े जाने लाओ बड़े बड़े बुझे सब पा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 2 9 8 2 152 तक धनिये दिया दो गुच्छियां 1.25 नू ताजा अदरक लवो 98 सेंस नू पाउंड बिना बीज वाला हदवाना 78 सेंस नू पाउंड अते पालक लवो 1.29 दी गुच्छी

सतनाम कर्ता पुरुख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व समाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तो तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वह शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उन्हों मिथ्या कहंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जांदी बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जांदा ये जीवन है एक दिन नहीं हो जांदा। इन्ना अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देंदा है जो है वो नहीं है दे बदल जांदा है उन्हों मिथ्या कहंदे उन्हों झूठ कहंदे कूड़ सब संसार।
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नू जोड़ लैंदा है तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, उसे ही गर्दिश दे च जिन्हों घूमण घैरी कहिंदे ने जिन्हों चक्कर कहिंदे ने और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बनया है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनया, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा धरण न गगना हुकम अपारा नांद न रैन चंद न सूरज सुनने सुन समाद लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध से उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो ओ कवाओ की से ओ ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर ओ आवाज की से कलगीधर कहिंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करदे ने और उस बाणी दा नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुगवै, ओंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवा क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा हुआ है। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है, ना दिन सी ना रात सी ना सूरज सी ना चंद्रमा सी ना ए जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा धरण ना गगना, ए धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ये धरण ये धरती सूरज दा ही टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी होई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हो। संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दिच प्रगट होया और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप देच प्रगट होए उनु मानव कहंदे ने, मनुख कहंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच हैगे। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवा, पत्थर टोटली सुत्ता होया है तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया है तो थोड़ी जी बनस्पति जागी उसकी लोड़ है, पानी उसकी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति
ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਇਸ ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੁਸ਼ ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹੋਏ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਹੋਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਮਾਨਵ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਨ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਹਾਥੀ, ਗਊ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਕਦਾ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸੋਚ ਸਕਣ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,

देवता है, जिन मानुख ते देवते किए करत न लागी बार, ये देवता हो गया। इदा दीवा जल गया, दीपक जल गया, इनू निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार विच निरंकार दिखाई देंदा, इनू पदार्थां विच परमात्मा दिखाई देंदा, इनू सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, इते देवता हो गया। पर मैं अर्ज करा देवते तो भी अगे है एक मंदिर कि ये तो नेरा ही रब दा रूप है, परमात्मा हो गया है। परमात्मा तो मनुख आया है, परमात्मा होना ही एदा भविष्य है और कुछ भी नहीं। फरवरी दे महीने की गल है, अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया कानपुर दिल्ली तो, मैं भी बड़ा हैरान है, 5:30 के करीब कौन फोन करता पाया मैं दिल्ली तो सी कोई नौजवान, कहिंदा ज्ञानी जी मैं सुनया तुसी कुछ भविष्य बारे भी जानते हो। मैं हैरान होया, सुनया तुसी ज्योतिषी हो, भविष्य बारे भी जानते हो। मैं कहा जानदा, मैं भी कह दिता जानदा। 21-22 फरवरी नूं संत अतर सिंह जी की बरसी दिल्ली मनाई जानी सी, मैं उसते पहुंचना सी, पोस्टर लगे हुए सन। कहन लगे सानू पता तुसी 21-22 नूं आ रहे हो, फिर असी आ जाने हां थोड़े कोल, असी भविष्य अपना जाणांगे। मैं कहा 21-22 अजे दूर है, मैं तेनों हुणे ही भविष्य दस देना। कहणगे हुणे फोन ते दस दोगे? मैं कहा फोन ते दस देना। की है साडा भविष्य? मैं कहा सारे जीवां दा भविष्य है परमात्मा होना, होर कोई भविष्य नहीं। इस तों पहले जो कुछ भी है रस्ते च ही है, कुछ भी नहीं है, भटकना ही है। हर जीव दा भविष्य है परमात्मा होना, परमात्मा होना, परमात्मा होना ही मनुख दा भविष्य है। उन्हें एक दिन जो है फोन रख दिती, ए जवाब नू तसल्ली बख्श नहीं लगे। शेख सादी साहब भी कहंदे ने भी मैं नजूमी ते नहीं हां, ज्योतिषी ते नहीं हां, पर मैं दस सकदा बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, मैं दस सकदा। तो चलो दसो बदबख्त कौन है? गुलिस्तान दे च दसदा है, हुण ते खुशकिस्मती गुलिस्तान बोस्तान पंजाबी भाषा विभाग ने, पंजाब गवर्नमेंट ने छाप दित्तियां ने, पंजाबी दे छाप दित्तियां। कहिंदा मैं दस सकदा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है? गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, के दर राहतश रंज दी गर कस अस्त। कहिंदे जिस बंदे दी राहत दूजे दे रंज ते खड़ी है, जो दूजियां दे रोने दे चों हासे लभदा है बदबख्त है, जो दूजियां दी बेइज्जती दे चों इज्जत लगदा है बदकिस्मत है, जो दूजियां नूं रोंदा होया वेख के हसदा है बदबख्त है, जो दूजियां दे दुख दे चों सुख लभण दी कोशिश करदा है बदकिस्मत है। ये बेड़ा मनुख है, ये बहुत दुख भोगेगा। ये फकीर इंज कहना है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हरी दा भगत अभ्यासी नाम अभ्यासी, ऐसा चाहिए जैसा हरी है, जैसा हरी स्वभाव करके, हरी निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, दयालु है, कृपालु है, ज्ञान दा सागर है, प्रेम दा सागर है। जदे सारे गुण मनुख दे आ जांदे ने, मनुख ईश्वर वर्गा हो जांदा है। कबीर ने ते स्वयं दावा कर दिता है, बिगड़ो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, गल खत्म। आद सच जुगाद सच, ए भी सच नानक होसी भी सच। कबीर कहते ना आप सच हो गए, सच हो गए। सच होना ही मनुख का भविष्य है, परमात्मा होना ही मनुख का भविष्य है। इस तो पहले संतुष्टि नहीं होगी, मन किधरे भी नहीं टिकेगा, पता ही नहीं।

सोसोरोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य है? यही मनुख है, रोग विच जीवे, सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारां फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयं तरंगं अथाह सहगर दिया लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दिया लहरां विच डुब रहा होवे। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहिंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे है, स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जद कोई चढ़दा है, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनदी है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनदी है। राम रस ते काम रस इज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा है जद कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाने। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग विच जीवीए, सोग विच जीवीए, इस तो छुटकारा हो सकदा है। बस धार्मिक ज्ञान जगत दे ज्ञान विच यही अंतर है।
ਫਰਾਇਡ ਜੈਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੇ ਤੜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਿਚ ਜੀਵਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਈ ਸਵਾਸਥ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਗਰ ਸਵਾਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਖਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਸਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਸਧੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ।
धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असि हुण अपना घर उथे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है जीवन दे होंदे हो या जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे हो या मौत तो किवें बचिए, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए, इना रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीम जिन भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर जिन्ना अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ए अर्थ नहीं है। अज तक जिन्ना अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है ए अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उसदी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने, ए अर्थ नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिदा। पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना ही चाहिदा है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिदा है। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिदा मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिदा है मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे चिंता नूं एक पासे रख, जो होंदा है ओ होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नूं परे सुट, जो होंदा है ओ होंदा है, जो नहीं होंदा ओ नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावां, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना होवां, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरां, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दे। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है। पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है और धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा
कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है भूतकाल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य की चिंता विच। ये दो बोझ इसके दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूतकाल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन की भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय विच दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है।

पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समय। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, फिर भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारिया तो भी पहले दे हां। ना बोद हेच निशान हाजे जमीनो आसमां, कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। ए प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा? ऐसा एक सूफी संत ने भी आखे, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ए खुदा, कोई मैं अज दा आशिक हां? अज दी तेरी तलाश कर रहा। अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके देरी नाम। ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नू भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नू लिया किथे लिया? वर्तमान देच, वर्तमान देच। भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान देच मिलेगी, और वही भगवान दी झलक वर्तमान नू भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल ये पैदा होता है, भविष्य नू और भूतकाल नू किवें मिटाईए? इते हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खां च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है। क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समां चाहीदा है, भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हम आदमी आ एकदम ही, मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एक दम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है। जिड़ा दम अजे आया नहीं है वो ते मेरा भविष्य है, ते जिड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है। जो दम चला गया इनू मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनू वर्त नहीं सकता, एकदम। तो इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, एकदम दे च की कर सकते हैं? एकदम दे च कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एकदम दे च कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एकदम दे च कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एकदम दे च कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहंदे ने एकदम दे च परमात्मा प्राप्त किया जा सकता, जद भी मिलेगा एकदम दे च, क्योंकि एकदम नकद है, ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नकदी नाल आउंदा है, नकदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जांदे ने, राम एकदम दे च पूरा हो गया, ओम एकदम दे च पूरा हो गया, अल्लाहु एकदम दे च पूरा हो गया, वाहेगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा, एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां दुख मिट जाणगे। ये ते फिर पहेली हो गई, नहीं पहेली नहीं। सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जांदे ने, वाहेगुरु इक्को ही दम दी लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसे मंत्र दे सुनन दे च आ जाए, वाहेगुरु

और जैसे मैं एकदम विच आवांगा सारे दे सारे ध्यान नू ल्यावांगा इसे नू ध्यान साधना कहंदे ने तो भूत काल खो जाएगा भविष्य खो जाएगा वर्तमान ने भगवान नू प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने बेत कतेद इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए टुकदम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा है। एकदम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर है परमात्मा हाजर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसे तरीके नाल वर्तमान दिच आईए। बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दिच नहीं जीवदे भविष्य दियां चिंतावां दिच जीवदे ने। बड़े बड़े सियाने मनुख वर्तमान दिच नहीं आउंदे भूतकाल दियां यादां च बैठे हुंदे ने। और एक दफा मनुख वर्तमान दिच आ जाए ते वर्तमान सिर्फ एक दम है उस दिच आमदेया मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है। तन रोग है मन सोग है रोग सोग तो उच्चा उठ जांदा है। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने उस हरि जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जांदा है। नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत न जन्म जना। एक वर्तमान दिच आमदेया अगला जन्म नहीं होवेगा मरण नहीं होवेगा। और ये जड़ा जीवन कोल है इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है। यही औषधि ईशान दे भ्रमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंड दे रहे। बाबा फरीद भी कहते ने आज मिलावा शेख फरीद ताकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। अज मिलावा ले तो अज तो मुराद की अज दा सारा दिन कता ही नहीं। अज तो मुराद वर्तमान वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहंदे ने यकदम बखे शराना बुरदम के कीसतम ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी ते नकद जिंदगी की सी जिड़ा मेरे मुंह दे च दम सी नकद सी। जिड़ा दम आया ने उधारी सी जिड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया वो ते खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इक्को ही दम है इक्को ही दम है। नकदी मेरे कोल इक्को ही दम है इक्को ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एकदम दी की जिंदगी है नहीं एकदम दिच परमात्मा मिल सकता है एकदम दिच सारा जहान मिल सकता है एकदम दिच सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है एकदम दिच परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एकदम नु किवें बतीत करता है इसे एकदम नु बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद दिच इसे एकदम नु बतीत कर छड़दा है आने वाले दमां दी चिंता। और दम दम करके सारी जिंदगी रायगा चली जाती है व्यर्थ चली जाती है। ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुयस्त। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाना। संसारी ते भगत दी पहचान की बस दो शब्दां दे पहचान लिबास तो पहचान नहीं होवेगी भगत है संत है। सारी दुनिया दे धार्मिक लिबास अलग अलग ने धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है धार्मिक हो जाना एक तपस्या है मेहनत है साधना है। किस तरह अंदाजा लगावांगे संसारी है ए भगत है जो भूतकाल दियां यादां दे जी रहा है भविष्य दियां चिंतावां दे जी रहा है संसारी है। पर जो वर्तमान दे टिक गया है भगत है भगवान दा रूप है उते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दे टिकदे आ होवन हार सोई परवाना। जो हो गया है ए होना ही सी होना ही है अनहोनी नहीं है अनहोनी नहीं है। ठीक है जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दसते ने अगर 60 साल है 50 दसते ने 50 है 40 दसते ने 40 है 30 दसते ने। और अक्सर स्त्रियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं उत्थे ही रुक जांदियां उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है अनहोनी नहीं
भगत कबीर कहते हैं, पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी। ते नहीं चुकया शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकया। इस तरह समझ तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया। तो वर्तमान दिच टिकदियां होवन हार सोई परवाना, जन्म हो गया है कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल। लेकिन मरदे दम तक मनुख नू सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नू भुलाण दी कोशिश करदा है। और यही कारण है कि परम आनंदी प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है, रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है। जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे और लोगां नू रोग ते सोग तो कढदे रहे। इस वास्ते जेड़े जेड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारयां दी जबान तो एक बोल निकलिया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।